लिसत भी रहे बारा नहीं आगा ते गुग माउन को ते वो मगिना को मबाते गे कनिया गया गिरितो का मगा पूम नगी कही नामन को पग आयो गा ये उन तंग इसुलती नितुर गजाई को कोतोब निन थिंक थिल रे गजाई सिया